0: ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେବେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରଖ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ଭାଦରେ ଲେଖରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने

0: यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा गाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर पवित्र घोषयात्रा अवसर रे शुणन्तु अमर विशेष वंदना।
3: नीलकंदर निवासी प्रभु श्रीजगन्नाथ मुक्तिदायक ब्रह्माण्ड नायक जगत बंधु कृपासिन्धु पुणि भक्तर अति प्रिय कालिया शांत सुंदर तांकर रूप ताठू आहुरी सुंदर तांकर ठाणी सतरे तांकर रूप जेतिकी सुंदर महिमा भी सेतिकी महत्वपूर्ण पतित उद्धार करि से बोलांती पतित पावन पुणि भक्तर दुःख दूर करि से दुःख नाशन भक्त मनरे केते आशा सेइ पतित उद्धारकारी दुःख हारी कालिया ठाकुरकु टिके देखिब नेत्र पवित्र करिब ता जीवनर सबु दुःख दूर हेइजिब हेले ता डोरी न लागिले ता पाखरे पहुंचिबा कोन संभव ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମନ ବଳିବାରୁ ଭକ୍ତ ତାରି ଡୋରି ଲଗାଇଦେବାକୁ

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतर देशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं कतर देशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगी दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते। अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगी दलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजीत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा दन्त चिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणन्तु आमर आजिर कार्यक्रमर सूचना। आमर स्वास्थ्य सकाळ 7:10 आजिर आलोचना रहिछि कलनरे प्रदाह। ए संपर्कें आलोचना करिछन्ते डाक्टर श्रीकांत पण्डा। प्रभात परिक्रमा सकाळ 7:25 कथिका सकाळ 7:35 एथिरे रहिछि आलोचना सर्वमंगल जगन्नाथ। आलोचना करिछन्ते डाक्टर वैष्णव चरण सामल। अंजलि सकाळ 7:40 कण्ठदान करिछन्ते प्रतिभा प्रधान। संगीत प्रसन्नजीत सिंह। श्रीक्षेत्र माधुरी सकाळ 8:30 एथिरे विषय रहिछि श्रीगुंडीचा मन्दिरर विशेष नीति। ए सम्पर्कें आलोचना करिछन्ते पूर्णचन्द्र खुंटिया। वैदेश विलासर 85 भाग सकाळ 8:45 गीत गीतिका सकाळ 9 नाटक प्रतीक्षार अंतिम प्रहर दिन 10 रचना डॉक्टर संघमित्र मिश्र प्रयोजना गोपबंधु चौधरी। अभुला गीत दिन 11:10 आधुनिक गीत गाई गीता पट्टनायक एवं बी बुद्ध प्रसाद राव। दासकाठिया गीत दिन 11:30 परिवेषण करिवे कालिंदी चरण होता एवं नवघन बारिक। मंजुळ मध्यान्हरे श्रोतांक एसएमएस जरिया हिंदी एवं ओडिया कथाचित्रर अनुरोधर कार्यक्रम दिन 12 डाक्तरंक पचारिबो जीवा दिन 12:30। आजिर विषय रहिछि वर्षा दिनरे स्वास्थ्यर जत्न विशेषज्ञ डाक्टर महुआ विश्वास। दिन गोटाए 10 जोड़ी नागर वाद्य परिवेषण करिछन्ति रवीन्द्रनाथ बेहरा। नारीमहल दिन गोटाए 20 गांधी चर्चा दिन 2:45 ओडिया कथाचित्र गीत अपराह 5 युववाणी अपराह 5:30।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित

0: करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अम्बाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ध्यान टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति

0: 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों

0: सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने

0: इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ओरमूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़, राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक, दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10 coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. The hydrogen facility has been established at Jind to enable safe, efficient and reliable hydrogen-powered rail operations. Anand Kumar, Akashwani News, Jind.
2: From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion.

0: हेलो मां, उठ
1: उठ उठ। मम्मी, आई एम योर अनफॉर्चुनेट डॉटर इन लॉ।
0: अरे नहीं, तुम्हें नो, हमें अनफॉर्चुनेट, तुम्हें तो आशिल नहीं, इतना सब कुछ समय इकोरो स्कूल।
1: नो नो डैडी, नो मम्मी, प्लीज, आई हैव नो इंटरेस्ट।
0: कहीं के
2: सी कौन कहूँची? मुँह तो किसी बुझी पर नहीं, मत टिके बुझी दिया।
0: तारे इतनी रोही पर अग्रह नहीं पर पति। अच्छा माँ, तुम्हें हम कथा बुझ पर तो?
1: ठीक है ठीक है, बुझो जी डैडी। आफ्टर द डेथ ऑफ बन बिहारी, आई हैव जॉइंड इन ए चैरिटेबल हॉस्पिटल।
0: प्लीज थिंक ऑफ योर चिल्ड्रन नैन्सी, प्लीज give a second thought at least.
1: I know you are the right person for my children. I want to go back soon. Mom, kali sokale chali jibi ma.
2: Ma, ete dine asilu je ami tike tate akhi purei dekhi parluni.
1: Mu apanakar photo dekhichi, bahut story sunichi about you, mummy. You are the idol mother. Please take care of your grandchildren.
0: Parvati, mu tamaku dine mission ra mane pachari khali deithile na, mone achi to? Amo Nancy sei mission nei bunchibar shapath korichi. Ta batare thiya honi, taku jibaku dio.
2: तुम्हें सत्यरे भारी निष्ठुर, पिलागुड़ाक गोड़ हाथ भी धोई ना कि कुआड़े गले बोहूटा अभिमान कौन कहीदेला तुम्हें कह से जाऊ।
0: अभिमान नुहे पार्वती, अभिमान नुहे अवबोध। माने रियलाइजेशन, अवबोध न आसिले एमती डिसीजन के नहीं।
2: ये बयस रे पिला चंचाल बुझु तो
1: मम्मी मम्मी आपण पारे निश्चय पारे कैन डू इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स। आई नो
2: तोर मो ऊपर इतनी गभीर विश्वास।
1: वन वाज सेइंग दैट यू आर ए लिविंग गॉडेस।
2: हाँ, गॉडेस नुहत आउ कौन, ठाकुराणी हेले तो कथा शेष। तेणिकी आखि पथर पाटी बंद।
1: मो ड्रीम रे आपण को देखे मम्मी, गणेश दुर्गांक भरी, गणेश दुर्गांक भरी दिशे आपण को हसिला हसिला मुह।
2: माँ मोर, तो जीवन रो खुशी जहा मु ये हतभागिनी देखि पारलिनी, तथापि तते कथा दौछि ये छुआ दीटा को मो मणिष करी निश्चय करी।
0: जाओ पार्वती, बहु को जीवार बंदोबस्त कर।
3: जीजी मा, डैडी कहती यू आर वेरी एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग एंड आल्सो अफेक्शनेट।
2: हाँ, तो मा कहूची मु ठाकुराणी, झी कहला अफेक्शनेट। बा
4: जेजे, मो भी डैडी को तो सुनी छी, यू आर ए फॉलोअर ऑफ गांधी, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग रे ट्रस्ट रख, ठीक ना?
0: अरे पारे अल्बर्ट, तू महात्मा गांधी को जानू है?
4: पिक्चर देखी छी, तम को देखी बाबू जी, गांधी ठीक तमरी भली दिसु थिबे।
2: बारे नाती टोका, तू जहा जेजे को गांधी का साथी रे समान कर देलुनी।
0: काहे की? ए तमें मन खराब करुच कि
2: आजिकल एका पिला तमें जानिन सब साधारण ज्ञान जीव अगरे।
3: आस जेजेमा, खाइबा को दबा। आस
4: ग्रांडपा। नहीं नहीं नहीं नहीं जेजे, आस जेजे, संध्या होलाणी पूरा।
0: हाँ चलो रे पिलाए, आज अंत तो समस्ते सांग हो ठाकुर को डाकिबा।
1: यस डैडी, प्रेयर करंतु, से गॉड मते

0: Aldor, Aldor, are Aldor, are you the subunigre? Aldor,
1: what the dakila kaka?
0: Ah,
1: Mubra prayer kurtuli?
0: Bah, Boria kata. Key prayer kurtulu? Tamana janitu.
1: A son Sarah Gordon Kara. Says a mustunku peace tuntu. Happiness tuntu. Kehi dukar na ruhuntu. Aya kaka? Mu prayer. Take meaning बुझी पा रची
0: हाँ गॉड जिम्मेदी तमा मानुंग को सुखरे रखी चुनती
1: मो तमा को तो कहीं किच्ची बुझी पा रुनी
0: अरे तो बापा कुआडे गले माँ भी मोला गला संग्रह समान अब तमे दीटा कहूँ आइला पोरी ये आश्रम स्कूल ले पढ़ी लो अब सुआ भोले घुसीलो और पोरे संतुष्ट हो बारा पाठा बाह चमत्कार कहीं भलो ड्रेस तोरे किनी देलेनी कहिलु
1: नाही जे
0: मु जानि छी तू किछि कहि परिबु दे अरे जदि तमे निजे असमर्थ तबे तो मा पाकु खबर पडु नंदी काहे कि फॉरेन करेंसी पठेबाकु नाही छुआ दीटांगु पिले छुआ बोली एठे गुंजी दे पार आ तमे दीटा बिसे गुडा बुडी को कथा रे भो
1: हौ काका तमे केते बेले घर को आसा जेजिंग पचरे लाय कथा मु तम को त किछि बुझि पारुनी
0: बुझिबु छेनाटा अरे मो पाई सिना तो जेजे व्यस्त नहुंती हेले तम दी टांग पाई तंग आखिरे निद नाही
1: सेमती कोहनी काका अधे दिन जेजेमा तम कथा भाभी कांदंती रात्रि खांतिनी
0: आ तू से कुंभीर कांदना देखि तरळी जाऊ हे तो
1: तम सर्विस करिवा कथा बा बिजनेस करिवा कथा बहुत डिस्कशन हुए
0: सेटु
1: सेटु जेजे रागंती जेजेमा कांदंती बस
0: आ तमे दीटा
1: हां मैं आखि बुझी सोई पडु केते बेले जेजे बापा जेजेमांकर कळी बंद हो के जानी ए प्रेयर से सोला नहीं काका मैं क्लास को जाऊं जी तमे थरे ले घर को आसा जेजे मा तुमको देखले बहुत खुशी हेबे
0: नहीं नहीं मु कार के खुशी करियो को कोठे जाई परिबे नहीं तमे तेटा खुशी कर दो से बुढा बुढी के
2: अरे बिपिन तू एठे ए भलो हला तो मारो देहटा टिके बिगड़ी जाई छी तो से तते देखबा को भारी बिकल हो छी
0: तमे कोन जानी तलो मु एठे थिबी बोली
2: अरे नाही रे सकाळु इमिति मॉर्निंग वॉक करू करू स्कूल आड़े चली आसी थी तो सही तो देखा ही गला हटात तते इठे
0: नाही मुसे अल्बर्ट सो जडी कथा बताउ तले
2: अरे पिल्ला को स्कूल डाकुचु ए ता क्लास टीचर विरक्त हेबे नि पुनी मो नाते मो पाखु को स्कूल रु कंप्लेंट गले मते लाज लागिब नि
0: हां हां तमे तो एकुटे राज करी सिकिचो ए संसार रे तमे जड़ा ओके लाज विषय जानि छन कि
2: एमती उल्टा सीधा कथा गुड़ा कहू चुकी रे
0: नाय मो कथा गुड़ा तो सब बेले तुमको गंध छड़े तमे केबे से छुआ दीटा कथा भाबिचो खाली प्रार्थना से तमे तंग मनीष कर दबो बोले भाबनी बापा से माने लाइव देखी चंदे लाइव आ जदि न पारु छ तंग मां को खबर दियो तंको बंची बार रास्ता देखाओ एमिति माड़ी मको चि निचो रास्ता रे पकाओ ने
2: रे तते से हाल पट्टा किछि कहि छि
0: नै कहिनी से पर्यंत कथा कहबा सिखिली आ जते बेले से मो बयसर हबो ना से खाली तमुको नुह समस्तक प्रश्न करिवो को दोष लागि हमको दण्ड मिलिला आ कोति पई आमे आश्रम स्कूल रे सीमित रहि गलु
2: नै नै मु ता भकुति बिने
0: तमे किछि करि परिबनि बडंता नै कि दियंक राण पकि संभाली होनि बापा
2: तू कोन कहुछो मोर त्याग तपस्या सबु अकारण हि जिवो
0: नै नै नै बाप तम त्याग तमे बाधा पाउच पाइब किंतु अल्बर्ट एलिस कौन पाइबे
2: तू कौन कहबे कुछ
0: तमे तो महापुरुष पलटि गल बापा तम छाई तले बढ़ी भी पारे आ चाकरी आर्थिक स्थिति ए सब बाजे कथा
2: दिने तोर प्राप्ति पाई ठाकुर को केबे धन्यवाद देछु
0: नाही बापा ठाकुर को मु चिन्हिनी तमको मोर ठाकुर बोली भावुली तम कहवा कथा मानुली बेदर गार पर हेले देखिले से गुड़ाक निच्छक बहादुर सचोट रहिबा जदि दरिद्र हबार भिन्न नाम तबे की दरकार से साधुतार की दरकार से त्यागर
2: मु जति जानि थांति मो पु मते इमिति प्रश्न करिवो ताले ताले
0: ओ बापा हे नता तो ये तो ठीक अछि बापा तमे हम कथा मो भाबिले नाही केबे थरे बो कथा भाबिचो भाबिचो केमिते से जीवन सारा तमको चाहि चाहि अपतरार दिन काटिचि
2: तू कौन मोठ तो भूख बेसी जानू है
0: बापा सत कह मोर

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरूआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in

0: क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबु आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहा वर्ष वर्ष नहे बरम पीढी पई रहिथाय चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: प्रजर्गुरुछु जोडीनगर वाद्य परिवेषण करिसेंती रवींद्रनाथ बेहरा।

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु SBI सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपणक घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीति पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: प्रचार करछु नारी महला।

0: राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है।

0: ग्राम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे।

0: इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा

0: रक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित होनीश 8.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे आमर परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपर एक विज्ञापन पर
2: गाँरु सहर जाए सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी

0: रूपा कौन कुछ बनजा
1: कहिनी हुए त कहिबी आग कह तुम रूम रे सोइबो ने निज रूम को जिबो
0: तोर जदि किछ आपत्ति न थाए
1: आपत्ति न थाए बोली तू त जानिछो
0: काहे कि के जानि बनजा मते केई दिन होबो एकुटिया रहबा को भारी डर लागु छलो
1: डर
0: मिछो कहुनी बनजा
1: देख रूपा सब कथा तोर डर क्लास को जिबा को डर लाइब्रेरी जिबा को डर कैंटीन जिबा को डर आ सेसर प्रोफेसर मो सहित कथा हो को भी डर ओफ तोर जदि एते डर विश्वविद्यालय को आसितलु काई कहिलु गां पाखा कॉलेज रे बीए पास कला परे से गां रे त रही जाईथांतु सेठी भाषा हे छुआ जन्म करथांतु
0: प्रकृतरे बनजा तो नथिले बथे मोय कैंपस रे दिने भी रही पर नथांती
1: किंतु मो बापा मा मते ठीक पाठ पढिया को पठाई चंदी तो कथा बुझिया को नहि
0: तुम ऊपर रागुछ बनजा तो ऋण मु त सारा जीवन भी सुझी पारिबिनी
1: से पाजे कथा कहना ऋण फुण कथा मु किछि बुझेना बरं तू मते एथरो मुक्ति दे तो निज कथा तू निजे संभाल
0: तोर जहा इच्छा
1: ए कोड़े कोड़े चलू
0: आओ कोड़े सही कोठरी को जोटा वर्तमान भाई मोर
1: चुप बस एठी
0: बनजा तो खांतु छु
1: आओ को तते के लेका कांदी असे ना काली भली लागु छि रूपा जो दिन दूर मफसल गांव आसे तो प्रथम करी हॉस्टल रे रहिलु तो सही तुम्हार परिचय ही नथिला सारा तिया धान बिल परी बहुत सरल दिसतला तोर मुहाटी तो आखे दीटा भितरे फरी रहितला संकोच साड़ी पिनि क्लास को जाउतले बोली के किते थट्टा करतले तते तोर चेहरा देखे मु भी भाबुथिली सत्य को कृषक घरर बहुटी फूल क्रमे चली आसते कैंपस भितर को मन पड़ी दिनकर घटना क्लास सारी हॉस्टल को फेरुले नजर पड़ा लाइब्रेरी सामने रे तते कई जन पुओ झी घेरी हईराण कर आधुनिकतार गोटे उत्कट फुटाणी बेबेखीन करदे से दिन

0: लेख तोर शेष चिठी जे तो आत्महत्या पई केवल खगेन्द्र ही दाई
1: बनुजा
0: लेखिबा को ही हबो सब कथा लेखि कागज खंडिके गोटे खोळ भितर भर्ती करी तापर मो ना लेखि तु मते दे
1: हां मु लेखिबी बनुजा मु सब कथा लेखिबी
0: लेखा सहित खगेन्द्र चिठी आउ से फोटो आउ एक खोळे रखि दे बेस चल चल मोरुम को
1: तोरुम को काहे के
0: आउ कोन तते मरिबार सुजोग दबाबो तते एड़ी छाड़ दीछे रूपा
1: मो पाई कि तू काहे कि हैरान हबलो
0: मो हैरान हबटो तो जीवन बेसी मूल्यवान रूपा आखिर लोह पोछि पखा मरिबा को ठीक कर सारिबा परे पुनी दुर्बलता काहे कि मु तो धरे नेले नि जे तू गोटे सब तो रूम ता बर्तन पे बंद थाउ चल जा भीतर को जा सेठी बसी देबो मु आसीबा जे सेठी बसी देबो
1: आउ तू तू कोडे जाउछु
0: कोडे नुए डाइनिंग हॉल को हरिबंध को कहिले से हम पे खाइबाटे रूम को पठे देबो
1: हौ जा
0: हां मु भूली जाइतली काली अशोक रे जन्मदिन तते निमंत्रण करछि कहिलु मु तको कोनटा उपहार देले सुंदर हबो
1: तो बंधु रे जन्मदिन
0: भाबुता मु आसछि
1: मो कथा रे मुंडपुरी तो प्रियर जन्मदिन उत्सव कथा तो भाबीबा को अवसर पाइना हु ए ऋण कण आसंता जन्म रे भी सुजी हबो
2: बनजा बनजा बनजा अरे रूपा तू एठी बनजा कोडी गला
1: डाइनिंग हॉल को जाई छी सांगे सांगे आसीबो
2: आसले कहिबो मु रूम रे अछि से निश्चय मो पखो आसीबो
0: बुझले तो विक्रम बाबू आद्दो हेला करिवेनी आज रात थाना को जाई इंस्पेक्टर को सब कथा कह देबे
3: निश्चय कहि मिस बनजा एटा मोर कर्तव्य बिलि भाबि नंतु
0: मु लेखितिबा चिट्ठी भी गोपन रे देबे से मु जने आत्मीय किछि असुविधा हबनी कहिबे सकाळ 9:00 रो 10:00 भितरे पहुचिबा को
3: आपण निश्चिंत रहंतु दरकार पड़ले मु निजे जाई एसपी को डाकि आनिबी
0: अच्छा
1: बनजा पूणी कोडे जाइथिलु केते राती हेलानी तते कोन जणा पडुनी
0: जाइथिली सब देहरे जीवन संचार करिवार मंत्र सिखिया को
1: थट्टा करूछु
0: थट्टा नहि तू उठि बस मु जहा कहूछि कह कह मु मरिबा को चाहे ना
1: मु मरिबा को चाहे ना
0: मु सम्मान र सहित बंची रहिबा को चाहे
1: मु सम्मान र सहित बंची रहिबा को चाहे
0: मु निजो को शोषित हेबा को देबिनी ना
1: मु निजो को शोषित हेबा को देबिनी ना
0: तुमे मते बलात्कार करि परिबनी
1: तुमे मते बलात्कार करि परिबनी
0: तुमे मते ब्लैकमेल करि परिबनी
1: तुमे मते ब्लैकमेल करि परिबनी
0: कह आहुरी जोरे कह बारंबार कह देखिबो क्रमशः तोर निजर शक्ति उपरे विश्वास आसीबो तू प्रतिरोध करि परिबो कह मु आत्महत्या करबा को जन्म हेनी
1: मु आत्महत्या करबा को जन्म हेनी
0: मु बंची रहिबी मु बंचीबी
1: मु बंचीबी बंची रहिबी हां बनजा मु बंची रहिबी
3: चाहिँ देख तो कथा तर लेडीज हॉस्टल नंबर 3 ना करे गोटे कोला रंगर कार आसी रहिला कि
4: हां सब ए आसी रहिला
3: हां 5000 अनुमान ठीक 9:00 बाजबा करू खगेंद्र पहुंचि जाई छी चल बनजा को सहायता करे को हबो
4: ओ बनजा जो कथा कहतला चल चल तबे बदमाश को पाने दबा को हबो
3: तू आउ दि जन को डाके आमे प्रथमे से गाड़ीटा को काबू करिनबा
4: हां
3: अन्य सब कथा बनजा बुझिबो
4: चल देरी करना अशोक आसामी खसी जाई पारे
3: चल
5: विजयनी ए विजयनी सुनिलुनी सकाळ सकाळ रूपा ता रूम रा भीतर पटु कबाटे खली आत्महत्या करि पकी छी
6: ए तू केंती जानिलु सुलोता
5: से बनजा रूम रे चिट्ठी रखि जाई छी बनजा नथिला बेले
6: सत्य रे आ किडी फलो झियोटा
7: नुहाउ कोन आमे सिना ठीके कौतुक करथुलो
5: चलो चलो समस्त को डाको घटनाटा कोन आगो बुझिबा
6: रूपा आत्महत्या करी छी हे भगवान बिना कारण की समस्या मोर एबे एबे पुलिस डाकिया को पड़िबो
8: मैडम मैडम मु तबे आसु छी
0: अरे अरे अरे भौणी रे सब न देखि अपन पळैबे ये केमती कथा खगेंद्र बाबू
8: ना ना से कथा रूपार बापा मा बुझबे ना मु रूपार किए की
0: माने आपण पर त धर्म भाई आपण त जाई परिबे नी आपण को एकले रहियक पड़िबो
8: आज्ञा माने
0: आत्महत्या पूर्वरु लेखिथिबा चिट्ठी रे रूपा आपण घी दाई कर जाई छी
9: ଆପଣ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି।
8: ମିଛ କଥା,

0: Oh, Nana! Nana! Oh, Nana! Are you a bit wholesome on the ground?
1: ये ला गंजेर गुण गाँव रु एठिक सत वर्ष हो गला सत वर्ष तले गाँव रे थिला बेले जा गंजे टानथिली आ हम चंदनपुर तो हला गंजुड़िया गाँ
0: मला ओपेरा पाटी छाड़ा दिन तू मोर कौन आ गंजे कथा मन थी कि आज सान बाबू को घर ओलो ओलो मालती गंजे पुड़िया दीटा न पाए कि एते कथा न हुए
1: अरे अरे सान बाबू कौन गंजे टानती कि रे
0: के जानी टानुतिबे आजिकालिका टोकाको को कथा मालूम कि
1: हरे राधा
0: ओहो राधा नुआ राधा कांत मला ओपेरा पाटले राधा पाट करतुली बोली कोन मो ना राधा
1: हेला बाबा कांत
0: कांत नुआ राधा कांत
1: मु कोन करबी ए गंजे निसा त इमितिका निसा रे जा

0: तम कलम टी दबा टी
1: नहीं
0: कहि बटी कोन लिखा हबो
1: लेखा जिवो माने लेखा जिवो संविधान रो प्रथम दफा हला
0: ए बापा का संविधान टा पर तम हातरे सेथरु देखो जो गुडा का आमा पई आ बो पई अड़वा होची से गुडा का बदली दियो
1: करेक्ट
0: आमा संविधान रो प्रथम दफा टा मुई लिखि दोई छी
1: हां हां लेख लेख
0: तमे से समय भितरे भाबिनियो प्रथम दफा हला श्री सिंह सामंतक गृहिणी श्रीमती कुंतला कुमारी सिंह सामंत अद्य दिवस एक नूतन संविधान प्रणयन कले लिखित संविधान नियम को गृहकर्ता सिंह सामंत समेत समस्ते मानवा को बाध्य हाँ जिनु भाई तमे एबे कहिबो टी
1: हाँ तुले गृहर अर्थ और क्षमता
0: क्षमता
1: दुईटी जाक मिस्टर सिंह सामंत हाथ में न रही केवल क्षमता रहिबो सिंह सामंतक हाथ रे
0: हाथ रे
1: ओ

0: कर देछि
1: काहा को साबड़ करिब म से माने त एठो गलेनी
2: है अ
1: छोंडाटा मो लागि गरम पानी टिके कर दे था तहले
0: आए चा टिके हेले हुंता मुंटा टिके ठंडा पड़ी जानता
3: ओ बो पुजारी तो गला रोसे यो केमते तोते कहितले ठीक 10 टा जिमोर क्लास थेला बोले
1: अरे सब हब रे सब हब तू अगर इतर चिट्ठा पढ़ी दबुटी
0: थाउ थाउ थाउ से चिट्ठी
1: काहे के थिबो ना मो ऊपर त सब बाय दोष लादी दउछ पढ़ जिलु चल पढ़िलु
4: पूजनीय बापा
5: मोर प्रणाम नेबे आपन को बिना अनुमति मु जा करी छी मते सेति पे क्षमा देबे आपन को बौर फटो तळी मुंडिया मारी मु संतोष को विवाह करली
2: है
5: आपन को संविधान रे लेखा छी संतोष का पाई ये घर रा फटक सब दिन पई बंद रहइबो कुहंतु त कोउ साहस रे आपन को अनुमति मु नै थांती मते फूल पुजी बेनी बापा आपन को सम्मान मु रखी छी संतोष उच्च शिक्षित उच्च पदस्थ ऑफिसर कोनोसी डिमांड तंकर नै जा कि आपन को ये त असुविधा रे पकी थांत तंकर स्वभाव ओ चरित्र पई इत्ते बड़ा पदवी रे अधिकारी से पाई चंती बापा मु आपन को जियो मोर कोनोसी कथा को आपन खुणी नांती पूणी थरे मोर अनुरोध बापा आपन को स्नेह मोठो उणा करिबेनी बहु को बुझी देबे बहुटा त मोर पागलीटाए ता कथा को धरिबेनी आउ केटा दिन पर संतोष मु आपन को पाखरे पहुंचिबु सेते बेले आपन जेते इच्छा सेते गाली दे परंती मु सब सोई परिबी बापा आपन को श्रद्धा पाखरे गाली सब मते चंदन परि लागिबो रोउची बापा
4: आपन को स्नेह पागली रीता
2: ओहो
1: कोन हैला पूणी मुंडा गरमटी
0: नाही नाही मुंडो गोलमाल हे जाउची सत्तरी झियोटा मते पागल कर दउ
1: मोला तम आखिरे कोन लुह जके आसुची
4: ए बो मु मो रूम रे छे
1: हौ तू जा
0: चिन्नु बो
1: हां
0: या भितरे मु अनेक भूल करी सारी छी जगन्नाथ रीता को आशीर्वाद करंतु से दुहे सुखरे रहंतु
1: मु जाए सड किछे हेनी तमे चा खाइनो चिन्नु जळख्या खाइनी
0: चल मु भी तम संगे रे जीवी मु भी रोसे करबी
1: तमे
0: अरे तमे कोन भाबू छ मते रोसे करे आसे ना तमे क्वार्टर को आसीबा आगुरु मु पुनी हाथ रे रांधी खाउथिल ना
1: तमे रोसे करबो
0: हां हां
1: तमे परा तम संविधान रे लिखि छ जे
0: नु बहु से संविधान आजि थारु बातिल हेला असल संविधान हेला निजो काम निजे करो कोन निजो काम
1: निजे करो

0: एक बंधु आमको मेल करिबा पाई मेल आईडी टी नोट करंतु yv.airctc@gmail.com।
1: तेबे श्रोता बंधु आजिर कार्यक्रम को एठि रखे विदाय नेउचु। मु थिली आपनको साथी श्री
0: आउ मु विश्वजिता
1: रहुचु।
0: नमस्कार।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपण कार्यक्रम शुणुछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। शुणन्तु चलित अधिवेशनर कार्यक्रम सम्पर्करे सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 81तम भाग संध्या 6:10 संध्या 6:30 ओडिया आलबम गीत ओडिया कथाचित्र गीत राति 7:02 जिला हालचाल शुणे। सुवर्णपुर जिला संपर्क में राति 7:25 पल्लीमंच राति 7:30 शुणे। वैज्ञानिक पद्धति में अंडा दिया कुकुड़ा पालन संपर्क में डॉ प्रदीप्त कुमार रथ सहित आलोचना। हिंदी चलचित्र गीत राति 8:02 इंग्राजी कार्यक्रम राति 8:30 शुणे। ए कॉल टू सल्वेज मैनकाइंड आलोचना करेंगे शरत चंद्र। सांप्रतिक घटनावली संपर्कित कार्यक्रम राति 9:30 रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली। नाटक पुरुषोत्तम देव प्रचार कर राति 10:00 रचना गोदावरी सुमिश्र बेता रूपांतर और प्रयोजना मनोरंजन दास। आसंताकालीर कार्यक्रम सूचना। सका 6:05 वंदना अनुचिंता सका 6:35 उपस्थापना तीर्थानंद मिश्र। श्रीमद भागवतर 99तम भाग सका 6:40 कृषि सूचना सका 6:50 सका 7:10 आम स्वास्थ्य शुणे। ईसीजी करवा कौन आलोचना करेंगे डाक्तर द्विजेश कुमार पंडा। सका 7:25 प्रभात परिक्रमा सका 7:35 ठीक कहतु ठीक लेखु एणवे लेखार नियम और श्रृंखला आलोचक डॉक्टर धनेश्वर महापात्र। चीरसबुज सका 7:40 दिवाकर महांति कंठरे शुणे पल्ली गीत। श्रीक्षेत्र माधुरी सका 8:30 शुणे खुंटिया मेकअप सेवा आलोचक पूर्णचंद्र खुंटिया। वैदेहीश विलासर 86तम भाग सका 8:45 नाटक माउसीमा प्रचार करिबु दिन 10:00 रचना फकीर सिंह प्रयोजना दुर्गा माछी। अतीश कुमार मजुमदार और सुश्री संगीता महापात्र कंठरे आधुनिक गीत दिन 11:10 गगन भेरी सिंह परिवेशित पाला शुणे दिन 11:30 स्वर निर्चर दिन 12:30 शुणे

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान पूजा भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्रीराम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई मुख्य संवाद चंडीगढ़ और जलंधर ठारे विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शुभारंभ और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री ओडिशार सातटी समेत देशर 75टी अमृत भारत स्टेशनर कले लोकार्पण रणनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने लक्ष्य आसंता रविवार ठारु त्रिराष्ट्रीय गस्तरे जिबे राष्ट्रपति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पक्षर विश्वास 2026 योजनार शुभारंभ सीरिया कुएत और ओमान रे थिबा अमेरिकीय सामरिक घाटी उपरे ईरान रो आक्रमण एवं जापान ओपन 2026 बैडमिंटन महिला सिंगल्स रो सेमीफाइनल रे पीवी सिंधु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा एवं सड़क भित्तिभूमि भली प्रमुख क्षेत्रगुड़िक प्राय 4700 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शुभारंभ कर अपराह्नरे चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज रे आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 505 कोटी टंका व्यय में निर्मित उन्नत मातृ और शिशु जत्न केन्द्र एवं 440 कोटी टंका व्यय में निर्मित उन्नत स्नायु विज्ञान केन्द्र को देश उद्देश्य उत्सर्ग कर प्रधानमंत्री पीजीआई चंडीगढ़ ठारे पीएम अभीम योजना अधीन 269 शय्या विशिष्ट क्रिटिकल केयर ब्लॉक भित्तिप्रस्तर स्थापन कर प्रधानमंत्री जीरकपुर कुराली ग्रीनफील्ड हाईवे को देश उद्देश्य उत्सर्ग करने जीरकपुर बाईपास एवं चंडीगढ़ विमान बंदर एरो सिटी ग्रीनफील्ड हाईवे भित्तिप्रस्तर स्थापन कर एक समावेश संबोधित कर प्रधानमंत्री कहते चंडीगढ़ विकास द्वारा लोकों जीवन पर लाभ केवल चंडीगढ़ में सीमित न रही पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लोकों पाखर पहुंचे पीजीआई चंडीगढ़ में उन्नत स्नायु विज्ञान केन्द्र उन्नत मातृ और शिशु जत्न केन्द्र एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक संप्रसारण द्वारा लक्ष लक्ष लोकों पर चिकित्सा सुविधा उन्नति आसिबो प्रधानमंत्री कहते अपराधिक न्याय व्यवस्थार संस्कार विषय उल्लेख कर प्रधानमंत्री कहते देश उपनिवेशवाद समय दंडविधि आईन बदल भारतीय न्याय संहिता लागू करन चंडीगढ़ ही आरंभ हो सहरर आधुनिकीकरण विषय प्रधानमंत्री कहते विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प चंडीगढ़ को एक हाईटेक सहर में परिणत कर 2500 कोटी अधिक टंका खर्च कर चंडीगढ़ को योजनाबद्ध सहरी विकास एक मानदंड भाव वर्णना करने सबुबले सरकार प्राथमिकता हो रही प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पंजाबर जलंधर ठारे आंचलिक संजोगीकरण को सुदृढ़ करने यात्री सुविधा उन्नति आणवा और अंचल अर्थनैतिक विकास को त्वरान्वित करने उद्देश्य एकाधिक विकासमूलक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन और उद्घाटन कर अमृत भारत स्टेशन योजना अधीन ओडिशार सातटी रेल स्टेशन समेत मोट 75टी पुनः विकसित रेल स्टेशन उद्घाटन कर प्रत्येक नागरिकों जीवन को सहज करने और प्रगतिर नूतन सुजोग प्रदान करने सरकार प्राथमिकता देउछन्ते बोली जलंधर रे एक जनसभा को संबोधन करी प्रधानमंत्री कहिछन्ते
1: साथियों विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई से रेल सेवाएं शुरू की गई है आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चलित मास 19-20 तारीख पर्यंत माल्डोभा उत्तर मासेडोनिया और रोमानिया को त्रिराष्ट्रीय गस्तरे जिबे नूआदिल्ली में गणमाध्यम को सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पश्चिम प्रांत सचिव सीबी जॉर्ज कहते माल्डोभा गणतंत्र उत्तर मासेडोनिया और रोमानिया राष्ट्रपति निमंत्रण क्रमे श्रीमती मुर्मू एक सरकारी गस्तरे जिबे से कहते यह गस्तर जथेष ऐतिहासिक गुरुत्व रही।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना

0: जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
2: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की

0: घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रूपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

0: जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही

0: तेबे बापा एठा को आसी थिले काहे की
1: राज्य रक्षा करबा को
0: रक्षा करबा को काहे की बापा
1: मां वर्तमान ओडिसा रे भीषण अंतर विवाद चली अछि एक पक्ष रे पुरुषोत्तम देव ओ अन्य पक्ष रे विक्रम देव जेपरी देखा जाउ छि विक्रम देव शीघ्र जयलाभ करिवे पुरुषोत्तम अनेक युद्ध रे परास्त हेलेनि बा सैन्य सामंत मध्य आउ नहंती युद्ध बंद हेबो मोर भय थिला तांको युद्धर गोलमाल रे कांचिर किछि क्षति होई पारे सेइथि पई ससैन्य रे सीमांत प्रदेश रे अवस्थान करूथिली युद्ध बंद हेले नगरी को फेरि जिबा मा
0: युद्ध जेते शीघ्र बंद हेबो बोली आपण विवेचना करंती बापा सेते शीघ्र हेउ नाही पुरुषोत्तम देव अति प्रतापशाली नरपति एते युद्ध रे परास्त हेबार कारण युद्ध करिवा को तांकर अनिच्छा भातृ विवाद शोभनीय नुहे बोली से चिरकाल कहु अछंती बर्तमान सुना जाए तांकर मन परिवर्तित होई अछि से निजे शीघ्र ए अंचल को युद्ध को आसु अछंती
1: विक्रम देव जय हुंतु बा पुरुषोत्तम देव जय हुंतु सेथिरे आम्भर विशेष लाभ बा क्षति नाही जहा हेबार शीघ्र होई गले हेला एठारे आउ बेसी दिन रहिबा को सुख लागु नाही मा
0: काहे कि बापा मते तो ए स्थान बड़ रमणीय बोध हेउ अछि ए पर्वत गुड़िक आपणार विनीत विशाळतारे अनंत पथ अधिकार करि रहि अछंती पुणी निराशर प्राणरे आशार क्षीण रेखा समान एही कृष्णा नदी अस्फुट मधुर कळबाणीरे निरंतर बही जाउछि जेपरि जननीर हृदयरे बात्सल्यर सुमधुर धारा
1: हो मा पद्म अनेक अंशरे एही कृष्णा नदी खूब भल यार माछगुड़िक खूब मधुर पहाड़ जंगल गुड़ाक मध्य बेश ठेकुआ हरिण पूरी रहिछंती मा अनंत शिकार करबा को जाइथिला मु देखे आज कौन मारी आनी ठेकुआ मांसटा बड़ सरस मांस मा
0: मनुष्य रे जीव हिंसा प्रवृत्ति बड़ जघन्य मनुष्य प्राण रे जेउटिक को देवत्व अछि ताकु विनाश करि मनुष्य को केवल पशुत्वमय हिंस्र जीव विशेष रे परिणत करे एहि जीव हिंसा कि कदर्च कि कुत्सित प्रेम रे प्रतिष्ठित मानव प्राण रे कि घोर शत्रुता ए तो मा मा अनंत भाई प्रतिदिन ए वन मध्यरु अनेक जीवजंतु मारे आणुछंती आज गोटे बड़ संबर मारी मते देखिबाकु डाकी पठाइथिले तांकु तुमे मना कलो नहि मु केते थरो कहिलिनी सुमंत भाई को मध्य कहिछि
2: एई कथा को तोर एते देखो पद्म हत्या क्षेत्रीय धर्म रक्त रंजित नहले क्षेत्रीय हस्त सुंदर दिशे नाही मा तू कौन जानिनु आज जो प्रांतर को कृष्णार शीतल मलय मधुर सौरभ रे सिक्त करूअछि काली ताहा भीषण श्मशान रे परिणत हबो सब राशि दुर्गंध मध्य श्रृगा कुकुर विकट चित्कार करथिबे मा पद्मा याठार बळी दारुण दृश्य आ जगत रे कौन अछि मु सुनिथिले ओडिसार राजा पुरुषोत्तम देव विपक्ष रे विद्रोह घटिछि युद्ध हेबो बोली एते शीघ्र मा पुरुषोत्तम देव ए युद्ध को स्वयं आसुछंती से कोन आसिलेनी
3: पद्मा
2: मु जानि नहि तेबे एतिकि जाने जे काल युद्ध हबो आउ से युद्ध रे पुरुषोत्तम देव उपस्थित हेबार कथा
0: कनक नदीर अपर पार्श्वरे सेठारे काल युद्ध हेबो सेदिन माँ ठारु महाराजा पुरुषोत्तम देवंक वीरत्व पराक्रम आउ वीरत्वर पराक्रमर चिर सहचर से उदारता विषयरे केते कथा सुनिथिले सेही पुरुषोत्तम स्वयं एठाकु आसी अछंती तांकर भाई विक्रमदेव विद्रोही विद्रोह दमन निमन्ते महाराजा एठारे उपस्थित मु युद्ध देखि नाही तु मध्य देखि नाहु कनक आमे मैंने काल से प्रांतर को जीवा कनक
2: बेस
4: आजि बेस स्थान रे साक्षात पुरुषाधम
5: जगतर सकल स्थान समान विक्रम देव किंतु तुम्भे एठारे काहे कि
4: काहे कि देखिबु आक्रमण कर सैनिक
5: विक्रम विक्रम विक्रम शांत हो भाई ये युद्ध सुंदर हेबो नाही
4: राजद्रोही संगे युद्ध केबे असुंदर नुहे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम आक्रमण कर सैनिक पुरुषोत्तम को
2: युवक पद्मा से गच मूळरे चल टिके पाणी देवा दा तुंदरे बिचारा की कष्ट
0: मुमूर्षर परिणाम जदि मृत्यु रे हेउ न थांता कनक

0: दुर्ग मु प्रथमे अधिकार करिछि
1: मु प्रथमे अधिकार करिछि
0: मोर सैन्य माने प्रथमे एठार प्रवेश करिछि
1: ना मोर सैन्य माने प्रथमे प्रवेश करिछि
0: मु वर्तमाने दुर्गर अधिकारी

0: ना अधिकारी मु
1: के परी
0: अधिकार थिबारो
1: की अधिकार
0: राजा रे अधिकार राज्य रे थाए
1: के राजा
0: समग्र ओडिसा राजा मु केबे दुर्गर नुहे रामचंद्र
1: तुमे समग्र पृथ्वी रो राजा होई पारो किंतु ए दुर्गर कदापि नुह विक्रमदेव
0: नुहे
1: ना ना नुह
0: तबे देखा जाऊ के दुर्गर राजा
1: की परी हां हां की परी देख देखा जीवो के ए दुर्गर राजा
0: जहार शक्ति अधिक
1: कार शक्ति अधिक
0: मोर ना परीक्षा कर देखिबा कहार अधिक
1: परीक्षा
0: हां परीक्षा आत्मरक्षा कर बरबर
1: आत्मरक्षा
0: हां आत्मरक्षा का पुरुष
2: महाराज सेनापति अर्जुन सह आक्रमण करियो
0: करू जा सैनिक आगे निष्पत्ति हेउ कि ए दुर्ग राजा नते युद्ध रे की लाभ
1: ता सत्य विक्रम देव युद्ध रे की लाभ आगे निष्पत्ति हेउ कि ए दुर्ग राजा
0: से तो निष्पत्ति होई छी समग्र ओडिसा देश रे जे राजा ता निकट रे दुर्ग खंड रे प्रश्न पूणी काहे कि
1: ए शरीर रे बिंदु ए रक्त थिबा जाय दुर्ग तुमर नुहे विक्रम देव
2: अर्जुन सिंह दुर्ग द्वार रे महाराज
0: जा सैनिक कथा कहो नहीं ए शरीर रे बिंदु रक्त थिबा जाय दुर्ग मोर रामचंद्र देव
1: अच्छा देखा जाओ विक्रम देव
0: देखा जाओ
1: किए हेला दुर्गर राजा विक्रम देव
0: किए हेला
1: एई तो अर्जुन सिंह तुम्हे जय लाभ करियो छ तुम्भर पुरुषोत्तमंकर प्रधान शत्रु एई विक्रम देव बड़ का पुरुष बड़ भीरु बड़ दुर्बल बध करो नचत चाकू बंदी करनी
3: शत्रु साहाज्य शत्रु को बध बा बंदी करवा खंडा जाने ना रामचंद्र देव इच्छा हेले उभय को बध करती बंदी करनी किंतु युवक द्वय सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर अन्न जल रे शरीर पुष्ट ए प्राण प्रतिपालित से इच्छा ना ओडिशा गजपतिंकर बक्सी अन्यायरे कहार प्राण निए नाही प्राण दान करिबा खंडायतर धर्म जाओ युवक ए दुर्गरु सत्र निष्क्रांत हो वर्तमान ए दुर्ग महाराजांकर शत्रु एडे क्षीण तरुण रवीर धीर विचरणरे हिमालयर तुषार शिला विगलित हला परी विद्रोही वृंद क्षणक मध्यरे बल वीर्य हराई देइछन्ति भविष्यत उज्जवल मा उत्कल भूमिरा

0: विदाय महाराज।
1: विक्रम कि निमंत तुमरे अत्याचार मु तुम्हर चीर शत्रु होई पारे दरिद्र प्रजागण नुहंती तुम्हें जान निश्चय विक्रमदेव जे बन्धी तुम्हे दुखीर कुटीर मान एत निर्दय निशंक प्राण से जाली देउछ से बन्नी शिक्षा तुम्हारे विद्रोह चिरकाल भस्मसात कर सही हो ना सेनापति
2: आज शिवरात्रि ना नरसिंह
3: ना आज त्रयोदशी काली शिवरात्रि हम
1: आज पुरुषोत्तम बंदी हो
3: हाँ आर वर्ष आज ठीक आज तो
2: चाहू चाहू बर्षे गला ए वर्ष आज जाए तो युद्ध आरंभ है ना
3: पुरुषोत्तम बोधे वर्तमान भीत निजर भ्रम बुझी पारी
1: सेनापति किए आसुची बसंत विराट ना से बुढ़ा अर्जुन सिंह
3: हाँ अर्जुन सिंह आसी भल
2: ता विचार ना नरसिंह लंका रे जोटी सान से साठी हा मन अच्छे से दिन कथा हौ जे आसु एथर निश्चय
3: ठीक युद्ध केते दिन चली थी थर के शेष
1: पुरुषोत्तम को कौन बंदी करा ना हत्या
2: हत्या से पर मूढ़र मृत्यु दंड आई हेबनी हत्या
3: तेरे बंदी कले लाभ अच्छी लाभ ये आजीवन निज कर्म फल भुंजु
2: थोड़ा ठीक
1: बंदी आउ हत्या उभय एका बेले करी हुआ कि
2: अर्जुन सिंह मध्य से
3: बसंत विराट आम सेनापति हब
1: विश्वास ना नरसिंह
2: कही नुहे नरसिंह निज गोड़े छिड़ा हवा हब
3: ता सत्य बर्तमान युद्ध शीघ्र आरंभ हेले भल अपेक्षा भल लगुन
1: अस नरसिंह
2: सैन्य सज्जित एथर तुमूल संग्राम ए युद्ध रे जय अवसंभावी एणिक विशाल राज्यर राजा विक्रमदेव नरसिंह रामचंद्र तुम्हें विद्रोह करी पारिब विद्रोह दमन युद्ध भूमि रे छाणित तरबारी धारे विश्वास ना सैन्य मानंग संगे मोर उपस्थिति सर्वदा दरकार जाय
1: एई से स्थान कृष्णा नदी तीर प्रांतर आज बहु दिन अतीत हेछि किंतु सही दृश्य सब सही परी एई स्थान प्रिय सैनिक बर विश्वनाथ नरेन्द्र एही ठारे जीवनर शेष निश्वास त्याग कले से आज को एक वर्षरु अधिक विश्वनाथ चली जाय अछ आउ से दिन क्षणक मध्यरे चली गल जीवनर प्रियतर नयनर निमिष प्रतिमा मोर तुम्हें पद्मावती एई वृक्षमूल एई क्षीण छाया एई सामूल दुर्वा एई ठारे मृत्युर अंतिम शज्जारे साहित विक्रमदेवर आक्रमणरे आहत मुमूर्षु निस्सहाय मु पिपासारे कातर मरणर जंत्रणारे अस्थिर सेतेबेले किए आसी मोरे शुष्क कंठरे स्वर्गर अमृत ठाली देगला मोर मरणरे जीवन दान कला चिन्ह पारिले नाही पद्मावती ना ना विशेष किछि नथिला जाने जाने असंभव एक विषम दुराशा किंतु विदाय बेले एति तो कही पारि थांति देवी देवी ए जीवन तुमर हेला नहीं चली गल एबे तुम मो मध्यरे आकाश पृथ्वीर व्यवधान सब सही परि रही अछि सही विशाल प्रांतर सही तरुतल सही कृष्णा नदी अदूर अबुद्ध कलतान बही जाऊ सब सही परि अबिकल अक्षुण्ण खाली आज ना तुमे केवल तुमे पद्मावती तुमे उफ की भ्रम की निराशा।

0: 이 싱하선은 그 브룩캡 걸어나이 모르 포스처나 서먹혈이 싱하서 들으셔 우다하러 뻗어비 캡버리 자리 걸라 브룩캡 걸어나이 수몽도 꼬리 티버 꼴꼬르 티버 밀어붙어 모르 간지라지로 걸어버 아직 깨우 멀었더리 그리어떠모 붙어 수몽도 모르 페리아서 뻗어 페리아서 마 꺼놓고 두모도 페리아마
1: महाराज ओडिशार राजा पुरुषोत्तम देव गड़ निकट आसी युद्ध करिवे सैन्य सामंत अकलंती
0: हो प्रहरी युद्ध हे प्रहरी किछ भय नाही
1: बड़ निकट रे शत्रु
0: से तोर कल्पनार अतीत प्रहरी अति निकट रे शत्रु जीवनर प्रत्येक धमनी रे प्रति तंत्री भेद करी शत्रु ए युद्ध रे मुझे परास्त आउ की युद्ध
1: नगरवासी बड़ संकेत महाराज
0: अच्छा
1: युद्ध को प्रस्तुत हेबा पेबो
0: प्रस्तुत प्रहरी सब प्रस्तुत काई क्यों बाटे जाए मु युद्ध को जाए
1: महाराजांकर एक ही परिवर्तन पागल परी जे ये पवन रे से जेपरी उड़ी चली गले प्राण रे हर्ष नहीं मुख रे हास्य नहीं कौन ये सम्मुख रे युद्ध भीषण ये युद्ध कांची रो की भाग्य की परिणाम युद्ध सहाय प्रभु साखी गोपीनाथ
2: महाराजा आसु अछंत प्रहरी
1: आसीबे एक खणी मणिमा
2: युद्ध आरंभ हे गेलाय शिक्षा आसीबा दरकार
1: युद्ध हेले छामु आपने भलो करी देखथिबे बोली महाराजा कहिथिले
2: मु देखिबे प्रहरी किंतु के कहि पारे कांचीर भाग्य रे कोन अछि किंतु विलंब होछि महाराजा आसीबा राव किते काल जीव जा प्रहरी देख त
1: जे आज्ञा मणिमा
2: की परिणाम ए युद्ध रे एई बोधे महाराजा आसिले जय हेवे युद्धरे कृपा कर प्रभु गणनाथ इजे करंतु महाराज इजे करंतु
0: महामंत्री रणबाद्य तो बेस बाजुछी युद्ध सेई पुरी हेउछि मंत्री
2: बेस चली थिला ओडिया सेनापति संगे कार्तिक राय खूब समकक्ष
0: अच्छा मु युद्ध भूमि की जाए मंत्री
2: अपेक्षा करंतु महाराज
0: अपेक्षा काकी
2: ना महाराज अपेक्षा करंतु
0: युद्ध भूमि रो की व्यापार मंत्री से कथा समस्त तन्न तन्न निरीक्षण करबा को हो तुम्बे से सीढ़ी ऊपर उठि जाय देखो तो महामंत्री आउ कौन हेउछि कोह
2: भीषण युद्ध महाराज एई एई कार्तिक राय बा बा कार्तिक राय जाओ जाओ आगे जाओ
0: प्रभु गणपति स्वाहा मंत्री देखो तो देखो
2: एई जने विपक्ष पक्ष रो सिंह पराक्रम रे आक्रमण करि आसो छि
0: महामंत्री
2: ओ कार्तिक राय पृष्ठ भंग दले ना ना
0: कौन कौन मंत्री
2: ना ना महाराज से अन्न पार्श्व आक्रमण करी चली गले तथापि प्रबल तेज
0: कार्तिक महामंत्री
2: ना महाराज ओ ये पुरी कौन
0: कौन कौन महामंत्री
2: जे पर एक घूर्णी वायु बत्ता बत्त समस्त सन्न भेद करी बही आसुछि
0: पवन
2: ना महाराज शत्रु सन्न बही मंत्र भेद करी ए जे पर एक दाबनलो एक प्रबल वज्रपात वनभूमि पलाश चाली दे
0: कौन कौन से महामंत्री
2: एक अपरिचित वीर पुरुष
0: शत्रु पक्ष मंत्री आशा ना मंत्री
2: चिन्ही पारे थर महाराज महाराज युवराज युवराज सुमंतराय
0: सुमंतराय
2: युवराज सुमंतराय जय युवराज सुमंतराय युवराज सुमंतराय फेरी आसुचंत महाराज
0: कौन कहछ मंत्री सुमंत मोर फेरी आसी
2: गणपति महाराज
0: बर्तमान कौन देखुच मंत्री
2: ना युवराज अग्रसर हेले वन देश पशुराज सिंह आगको
0: एबे एबे महामंत्री
2: युद्ध भूमि पार्श्व अदृश्य भीषण युद्ध महाराज
0: सुमंत मोर प्राणर पुत्र भूषण युद्ध मु जान शत्रु चतुर्थी करे
2: जय जगन्नाथ
3: उत्कल गजपति आदेश चंडाल संगे हेब मोर विवाह मंत्री को आदेश दिया जायछि आउ सेथि लागि मंत्री वासरे अपेक्षा करि रहिछि मु विवाह चंडाल संगरे विवाह विवाह तो होइछि आउ पुनी विवाह कोन किंतु पति भक्ति पतिंक आदेश पालना

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम

0: काम कर रही हैं।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
2: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
2: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अपन मने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
4: नमस्कार, आज अंतिम मुख्य संवाद सह मु उदयनाथ स्वाई। श्रीक्षेत्र पुरी रे श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखरे पहुंचिले तीन रथ। आड़प मंडप को आसंताकाली विजय करिबे महाप्रभु। रथ उपरे संध्या धूप नीति परे आरंभ हेबो पहुंडी विजय। अमृत भारत स्टेशन योजनारे ओडिशार 7टी समेत देशर 75टी रेल स्टेशनर लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। कहले अमृत स्टेशन देशर संस्कृति और सभ्यतार प्रतीक। रणनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करिबा लक्ष्य रे आसंता रविवार ठारु त्रिराष्ट्रीय गस्तरे जिबे राष्ट्रपति। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पक्षर विश्वास 2026 योजनार शुभारंभ। स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा परिचालित कृषि उद्योग को सुदृढ़ करने लक्ष्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। क्रीड़ा क्षेत्र में स्वच्छता दुईट डोपिंग निरोधी आईन कार्यकारिता विज्ञप्ति प्रकाश कले सरकार। वेस्टइंडिज्र किंवदंती क्रिकेट खेला सार गारफिल्ड सबर्स 99 वर्ष बयस परलोक। क्रिकेट इतिहास अन्यतम कुशली ऑलराउंडर।

प्रादुर्भाव पाई निरंतर निरीक्षण करंतु एवं प्रारंभिक चिन्हट करी उपयुक्त पदक्षेप नियंतु। आखु गच्छ 4 5 मासर होइगले विलंबरे आसीथिबा पिलगुडीकु बाहर करी तळ सुखिला पत्रकु काढी 2 3 टी आखु एकाठी करी बांधी दियंतु। माटीर आद्रतार सदुपयोग पाई अणधान फसल जथा चीना बादाम हरड जड़ा मुग बिरी और राशि इत्यादि फसल चाष करंतु। दस्ता अभाव थिबा जमीरे एकर पिछा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट किंबा 6 किलोग्राम जिंक ईडीटीए 2 वर्ष को थरे शेषोड़ जमी प्रस्तुति समय प्रयोग करंतु। पनीपरिया तळीघेरा को वर्षारू रक्षा करिबा पई जल निष्कासन व्यवस्था सहित तळीघेरा को पॉलीथिन सीट्रे आच्छादन करंतु। नर्सरी बेड गुडी को उच्च करी प्रस्तुत करंतु। एक एकर धान चाष पई 400 वर्ग मीटर 10 डेसिमिल तळीघेरा आवश्यक होइथाय। शेष ओड़ बेळकु एही 10 डेसिमिल तळीघेरा रे 200 किलोग्राम कंपोस्ट किंबा सोडा गोबर खत 4 किलोग्राम डीएपी 2.5 किलोग्राम पोटास सार एही समय रे प्रयोग करंतु। तळीघेरा को ओदा रखंतु एवं ठिया पानी किपरि न रहिबो सेति प्रति ध्यान दियंतु। तळी 15 दिनर होइगले तळीघेरा रे 4 किलोग्राम यूरिया सार प्रयोग करंतु। तळी उपाड़ीबार 7 दिन पूर्व 400 ग्राम क्लोराट्रानिलिप्रोल नामक दानादर कीटनाशक किंवा 800 ग्राम काट्रा हाइड्रोक्लोराइड 4G नामक दानादर कीटनाशक किंवा 1 किलोग्राम फिप्रोनिल दानादर कीटनाशक 10 डेसिमिल तळीघेरा रे प्रयोग करंतु। दानादर कीटनाशक प्रयोग करने द्वारा धान रोईबार 3 सप्ताह पर्यंत कांडविंधा पोक बंगी पोक पत्रमोड़ा पोक तथा नली पोक आक्रमण फसल रक्षा पाई। हरड़ बिहन को बुणा आगर 1 किलोग्राम हरड़ बिहन में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम कि 3 ग्राम कार्बोस्किन और थीरामर मिलित फिंपिनाशक मिशाई बिहन विशोधन करंतु। बिहन विशोधन कर सारे यह सुखीगला बुणार प्राय 1 घंटा पूर्व हरड़ को राइजोबियम बीजाणु कल्चर द्वारा 20 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बिहन में गोलाई उपचार करंतु। बिहन को 3 5 सेमिटर गभीर पोती माटी घोड़ाई दिं।

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पापहर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथ यात्रार धारा बरणी शुणा आम राज्यर पुरपल्ली तथा विश्वर कोण अनुकोण से आग्रह सहित अपेक्षा करगणित प्रिय श्रोता बंधु मान पुणी थे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होची लक्ष लक्ष श्रद्धाळुंकर आस्था विश्वास ओ भक्तिरे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। एही पवित्र रथयात्रा अवसर रे भक्तमानकर सुस्थता ओ सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्तंकर दायित्व। सेहिथिपाई खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हबा अत्यंत जरूरी। एही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव रे तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो, जेमितिकी तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोल में बिक्री होउथबा खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होउथबा खाद्य, माछी बसुथबा खाद्य एवं पचास सड़ा फल और पनीपरिया आदौ खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच हवा परे निज हाथ को साबुन ने भल भाव धुअंतु। शरीर जल शुष्कतार रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रहंतु। अळिया आवर्जना तथा बळका खाद्य एणेतेणे न पकाइ डस्टबिन व्यवहार करंतु। जरूरीकालीन सहायता पाइ पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752222175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाइ 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारीको शक्ति विकसित भारतले समृद्ध ओडिशा पाई महिला सशक्तिकरणको केन्द्र ओ राज्य सरकारको विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरणर जुगान्तकारी योजना सुभद्रारे महिलांको मिलिछि आर्थिक सहायता। मुख्यमन्त्री कन्या विवाह योजना, एकीकृत ममता ओ प्रधानमन्त्री मातृवन्दना योजनारे योग्य हिताधिकारीको सहायता। असुविधारे थिबा महिलांको तुरन्त सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नम्बर 181, असहाय महिलांको पाई शक्ति सदन, वन स्टॉप सेन्टर, पोषण अभियान, मुख्यमन्त्री सम्पूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यमरे गर्भवती किशोरी प्रसूति ओ शिशुंको स्वास्थ्यको दियाजाउछि प्राधान्य। प्रारम्भिक शैशव जत्न ओ शिक्षा, आमे पढिबा आम भाषारे बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरियारे महिला ओ शिशुंको सर्वांगीन उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला ओ शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
2: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, महाप्रभु पुणी आउ थरे समस्तक छत्ता को फुटे दैछन्ती आ भितरे।

यः स्वयं जगदीश्वरं वितानुतां श्रेयांसि ब्रूयांसि वः। एहि आम बड़दाण्ड बड़ ठाकुरंकर विजयस्थळी बळियार भुजंकर सेहि बड़दाण्डर से सिंह द्वार गुमुट भितर आम देखिपारुछु सेहि आसुछन्ति पहंडी होइ हली हली झुली झुली बाईसी पाच दे घंटुआंकर घंट घंटर से नादर ताले ताले हरिबोल हुलहुली रे गगन पवन प्रकंपित होई उठुछंती। आदि द्वादश यात्रार श्रेष्ठ यात्रा रथ यात्रा अनुष्ठित होउछंती जहांको की बार मासरे तेर यात्रा लगाई अछंती जगतर नाथ पतित जनंक उद्धार निमन्ते नाना उत्सव लीलासी। ए लीला भितरे श्रीलगी शिखरे हरि द्वादश यात्रा विनते स्नान गुंडीचा अयन शयन पारस पालट मदे देव उत्थापन मकर ओढ़ण दोल दमनक चरी चंदन चंपक उत्सव सहित ए विधि लीला विस्तारी ए विधि लीला को अनुष्ठित करी बलियार भुज आज आसुछंति घंटुआ मानंकर उद्घोषण रे अपेक्षा करिछंति अरुण स्तंभ निकटरे अनेक श्रद्धालु नृत्यांगना माने अपेक्षा करिछंति मठर मठाधीश माने आलोड चालुछि चामर चालुछि हुळहुळी रे समस्त भक्त मानंकर स्वर एक स्वर रे उच्च स्वर रे उच्चारित हेउछंति हरिबल हुळहुळी सहित आउ आमे देखि पारुछु वर्षा टिकिए टिकिए हेरे मध्य भूर्क्षेप नाही वर्षा को कहीं ना भगवान को सहित भक्तर मिलनर यात्रा एक वर्ष परे प्रभु आसी सिंह द्वार से गुमुट दे रथारूढ़ हेबे एवं चली जिबे से कर्म भूमि जन्म वेदी को जोठी माँ अपेक्षा करी रानी गुंडीचा कथा दे आसबि निश्चय आसबि बर दे माता से जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग दफी गरी असी प्रभु आपणार करी नेबे बंधु मानंकु आउ आज क्रम नयरे आसी आमे देखुचु नीला जो निया हुळा बनाटी मध्य ताहा मध्य चली प्रस्तुत होउछनी जणे सेवक तार जो हुळा बनाटी माध्यम रे निया को संजोग करी प्रभु निकट रे पुरी रा उत्कलीय समर कलार निखुण दर्शन प्रदर्शित करिवे प्रभु निकट रे कारण जेतेबेले विभिन्न समय रे उत्कल को मोगल मानंक ठारु विदेशी मानंक आक्रमण होइथिला सेई समय रे एई छाउनी मठ जहां समर कला रे बा ओई पुरापल्ली रो श्रीक्षेत्र युव भेंडिया मान को जो समर कलार शिक्षा देते जहाँ फल जगन्नाथ को विदेशी आक्रमण रु रक्षा करा जाई पारिथिला से कालिया ठाकुर से बलिया ठाकुर आज साम्य मैत्री प्रीतिर वार्ता नहीं भक्त सहित भगवान कर मिलनर यात्रा भाव भक्तिर यात्रा रे आज छुट्टी आसुछंती बड़दाण्ड रे अपेक्षा करिथिबा से नंदी घस ताल ध्वज दर्प दलन तीन गोटे रथ रे रथाड़ रूढ़ हेबे एवं सेवक माने टाणी नेबे आमे देखिथिलु किसी समय पूर्व श्रोता बंधु खाली रथ को प्रतिष्ठा करा जाय नथिला रथ उपरे पानी सिंचन करा जाय नथिला प्रतिष्ठार जल को आमे देखिथिलु राधावल्ली बे मठर से आकाशवाणी रो केन्द्र जो करा जाय छि जे जो घोड़ा गुड़ी को रही छंती ताकु मध्य जल सिंचन करी से घोड़ा को मध्य प्राण दिया जायथिला तांको मध्यरे मध्य प्राण स्पर्श को करा जायथिला कारण मन आउ घोड़ा जहाँ हूँ सारथी ए सदी संजोगीकरण नहब आम प्रभु को पाईपर ना से क्रमान्वयर कथा कहली आमर जेपटी चारिगोटी प्रहर चारिगोटी प्रहर कहले प्रभात सकाळ संध्या एवं रात्र ठीक से हीपरी प्रथमे आसीथिले से वर्ण विभार प्रथम किरण नहीं सुदर्शन महाप्रभु चतुर्धा मूर्तिर पहंडी विजय रे प्रभातर प्रतीक होई एवं तापरे आसुछंती दिवसर प्रतीक बड़ भाई बलभद्र मनुआ ठाकुर सीए होउछंती अचल महामेरु जहांकु की सचल करिबा संभव नुहे कारण सीए दोर्घ्याम सावित लांगलम समुशलम कादम्बरी चंचलम रत्नाढ़वर कुंडलम भुज बड़ई राक्रांत भूमंडलम वज्राभ्याम चारु गंड जुलम नागेन्द्र चुड़ जलम संग्राम चपलम शशांक धवलम श्री काम पाल भजे से दोर्भ्याम सोमित लांगलम जी हूँ कर्मर प्रतीक जी समस्त को आह्वान दिखती जीवन रे कर्म कलि जाओ कहीं मानव आसीछ आमे आमर जीवन मध्य क्षण धर्म संचिबा कर्म करिबा भल कर्म टे करिबा भल कर्म द्वारा

0: महाप्रभु को कहा जाए से भुक्ति भी दे पारंती मुक्ति भी दे पारंती। भुक्ति कौन जानवा दरकार श्रोता बंधु, मुक्ति कौन जानवा दरकार। भुक्ति माने आम संसार को आसीचे, आम रक्त मांसर शरीर अच्छी, आम लोभ मोह ये सब गुण सब आम भितर अच्छी, या आम दुर्गुण बोली कहीक एड़े हम ना। आम संसार कि भोगर कामना अच्छी, भगवान जानती संसारी लोक मान भोग कामना परितृप्त नमने मुख्य आड़क जीवे ना, तेणु से आम समस्त भोग बासना कामना को मध्य पूर्ण करती, जहाँ को कह जाए भुक्ति। तेणु भुक्ति हेले जिते कामना बासना पूरण हो जाते मनुष्य से मुक्ति चाह। तेणु भगवान एभली शक्ति अच्छी से भुक्ति भी दिंती मुक्ति भी दिंती। तेणु यो कथा शेष कथाटी है तरण भव बारिधे, तेणु भव सगर तारण कारण है बोली जो गुरु वंदन आम कहू। तेणु भव सगर रु तारण करने भव सगर एत व्याप्त आपड़ देखुं पुरी रे महोदधि को, महोदधि अपर पार्श्व आम देखिपे कौटी तार तीर अच्छे आमको जना ना। तेणु से जो तीर दिशुन महोदधि से महोदधि भितर जदि आम पहरा नजा पशिजा आमर जहा अवस्था हम ये संसार पहरा नजा संसार सगर में आम पतित होकरी जो चित्कार करुचे करुण चित्कार करुचे से चित्कार महाप्रभुंकर कर्ण कोहर में जिते पड़ो महाप्रभु करुणार्द्र होजे करुणार विगलित होकर आमको ये भव सगर रु तारण करने महाप्रभु आमको सहायक हे। तेणु यही सब आठटी कारण जोटा कहगला जोटा स्कंद पुराण महाप्रभुंकर महिमा भाव वर्णना कर सबू कारण गुड़िक एकत्रित होवर महाप्रभु आमपाई एत मात्र अन्य एवं महाप्रभु आमपाई एत मात्र प्रणम्य। तेणु महाप्रभुंकर से पवित्र पावन जात्रा रे काहीकि महाप्रभु आसुना गुमुट भितर अटकी रही घंट घंटा मध्य बंद हो जा घंट घंटार शब्द आम शुणुना कौन है आम जानिना आमको भी जना पड़ू ना तार कारण किंतु महाप्रभु आसवर सूचना तो आपको आम देलु हे तो बारटा है वर्तमान आउ अध घंटा भितर महाप्रभु आसिक नंदी घोष से आरूढ़ हे। मु माइक्रोफोन धरवाई डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय को अनुरोध कर।
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज बड़दाण्डे अपूर्व शोभा, गत काली शोभा नथिला, आज भक्त एवं भगवान मिलन महामहोत्सव। तेणु महामहोत्सव आज समस्ते एकत्रित होचे एवं आमे देखी सारे ये बड़देउल भितर विराजमान करिथिबा बड़देउलर बड़ खाउंद श्री बलभद्र भगवान से तालध्वज रथरे विजय कर सारे देवी सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन से मध्य दर्प दलन रथ को मंडन कर सारे आउ जणे केवल अपेक्षा कर नंदी घोष रथ केतेबले महाप्रभु आसिबे एवं महाप्रभुंकर महाप्रभु बड़देउल प्राय छाड़ी सारे एवं श्रीमंदिर वर्तमान शून्य महाप्रभु जो रहती से ही जाए पूर्ण महाप्रभु हेले पूर्ण ब्रह्म तेणु तांकर वंदना करने को जाए वेद कहती पूर्ण मदह पूर्ण मिदंग पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। महाप्रभु होचंति संपूर्ण पूर्णावयव एवं पूर्ण ब्रह्म से जोठी रहिबे से स्थान हिजिबो पूर्ण जो से स्थान छाड़िबे से स्थान हिजिबो शून्य। आज बड़देउल हेलानी शून्य बड़देउल रे आज माँ चाहिथिले खाइया को देथिले एवं खाइबा को दे सारा पर कौन हैला के जानी आज प्रभु उठिकरी भाई भौणी को संगरे नहीं ताकु पदेवी किछि कुआ बोला नहीं को न कही सेवक मानक सेवक मानक सहायता रे आज रथ चढ़ी पलाऊ घंट बाजिला।
0: गोटे कथा आपन को कहवा चाहिए सी तांको पदे कहिले नहीं साथी रे नेले नहीं तथापि मध्ये मा लक्ष्मी खेचुड़ी रांधिकरी तांको देले
1: देले
0: एई होचे हमर भारतीय नारी
1: ये होचंती हमर भारतीय नारी
0: नारी रो जो आदर्श नारी रो जो परंपरा एवं तार मनोभाव जे से मत न पचारंतु से न कहंतु से जानतु किंतु मोर कर्तव्य तो मु करबी सी जेते बेले जाउचंती मते रागी करी न चाहि करी पळेले मध्ये गोटे स्त्री रो कर्तव्य होची ସ୍ୱାମୀଟା କ'ଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଘରୁ ଯିବ।

0: संकल्प माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मार्गदर्शन ओडिशार विकास प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग
1: पवित्र श्रीगुंडीचा यात्रा अवसर में अगणित श्रद्धालु मानंकु अनेक अनेक अभिनंदन ओडिशार शिल्प प्रगति और स्वाभिमान प्रतीक नाल्को
2: जय जगन्नाथ रथयात्रा हेउची भक्ति आनंद एवं आध्यात्मिकतार एक महापर्व भिड़ भितरे जदि किछि जरूरी परिस्थिति उपुजे किंबा के असुस्थ हे पड़ंती व्यस्त विव्रत होंतु नाही तुरंत पूरी जिला चिकित्सालय कंट्रोल रूम को फोन करंतु नंबर हेउची 0675222275 एहा सहित आउ किछि जरूरी सहायता नंबर गुडी को मने रखंतु पुलिस आउ अग्निशम सेवा पई 112 एम्बुलेंस सेवा पई 108 स्वास्थ्य सहायता पई 104 शिशु सहायता पई 1098 महिला सहायता पई 181 ट्रैफिक सहायता पई 1099 एहि समस्त नंबर मने रखंतु सुस्थ रहंतु सचेतन रहंतु एवं रथ यात्रा को
3: ब्रह्म साक्षात ब्रह्म प्रकाशते तेनु ब्रह्म सम प्राण सखा नाही आउ तेनु ब्रह्म भली प्राण सखा प्रकृति रे नाही कारण ब्रह्म ही आमको बंचैछि ब्रह्म ही आमको मारिबो तेनु आमर सी औचंती जीवन जीवनांतक आमे जदि आमर सी औचंती जीवन आ से मध्ये आमर जीवन रो अंतक से मध्ये आमर जीवन नाशकारी से जते दिन पर्यंत आम हृदय रे जीवात्मा रूप रे अवस्थान करुचंती सेते दिन पर्यंत आमे समस्त जीवंत जो दिन एई जीवात्मा रूप रे विराजमान करुथिबा आम शरीर रो महाप्रभु बाहरी जिबे सेई दिन आमको केही आउ जीवंत कहिबे नै आम नाम हे जीव मृत आम नाम हे जीव सर्जब आम नाम हे जीव मुर्दार तेनु आमर नाम के दउची आमे जीवंत आमे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव यार ये ये नामकरण कहा जोगु ब्रह्मंक जोगु तेनु सेतिपई कुआ जाय ब्रह्म सम प्राण सखा नाही आउ तेनु ब्रह्म भली प्राण सखा प्रकृत रे ए संसार रे केही नाही कारण से अछंति आम शरीर रे सही परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर जुनतिष्ठति जीवात्मा रूपरे अछंति त आमे जीवंत आमे शिव आमे हौचु सबु कल्याणर मूल सबु किंतु जो दिन से ये पिंड छाड़े ये पिंड रे बसी जीवात्मा रूप से छाड़ीजे चलीजे से आमर नाम परिवर्तन आमको कहीं कहबे नहीं शिव बोली सरु शिवरु हर्षे काटा उड़ी जीव रहिबो सब मुर्दार प्रेत केते कथा कहिबे कौन होची प्रेतकृत्य होची ये प्रेतात्मा ही जाइची प्रेत बाबारे तेणु महाप्रभु होचंती आमर जीवन सी होचंती आमर जीवनांतक तेणु तांको सहित आमर घनिष्ठ संपर्क रहिची तेणु तांकरी पाखरे ही विश्वास रखिबा उचित हे प्रभु आपण मोर सर्वस्व आमे कोठी थिलु आपण खोजी लड़ी आणिकरी आम पई गोटे मानव शरीर देले तार भितर आमे प्रवेश कलु पुणी आमे बढ़िलु एवं पुणी समय आसिला सेथुरे आपण बाहरी गले पुणी आमे कुआड़े चली गलु अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना अव्यक्त रु आसिलु अव्यक्त को जीवु आउ वर्तमान आपणक सहित यही जो शरीर टिक देथिले आपण से शरीर भितरे जीवात्मा रूपरे आपण उपवेशन करथिले एवं आमको केते दया करिछंति महाप्रभु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि जेते बले आपणकर दिव्य यात्रा होची जो यात्रा को देखिबा पाई मुनि ऋषि माने वर्ष वर्ष अपेक्षा करिथांती एवं देवता माने वर्ष वर्ष अपेक्षा करिथांती एवं भक्त माने
4: डॉक्टर दास राधावल्लभ मठ उपरु गुमुट भितरे महाप्रभुंकर दे आखी देखुचंती
3: आज्ञा
4: देखा जाउची ना नै
3: हां हां दिसिलानी दिसिलानी
4: पूरा बहुत सुंदर
3: सुंदर दिसिलानी तेणु वर्तमान महाप्रभु ଗୁମୁଟର ଶେଷ ପାହାଚ।

भक्त माने श्रद्धालु भक्त माने दर्शन करने को आसी ना प्रभु को किपरि भाव भक्त माने भगवान को भलरे दर्शन करेंगे प्रभु यात्रा किपरि भाव श्रृंखलित भाव अनुष्ठित हे से श्रीमंदिर प्रशासक मुख्य प्रशासक एत तत्पर भाव जिलापाल एसपी महोदय समस्ते तत्परता सहित लागि पड़िछन्ति प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर यात्रा किपरि श्रृंखलित भाव अनुष्ठित हेबो या सहित ओडिसार बहु मान्यगण व्यक्ति मंत्री महोदय माने आमर जो आमर कार्यालयर सब करा जायछि सब व्यवस्था सेठी मध्ये आसिकी बसिलेनि प्रभुंकर यात्रा दर्शन करिवे परम पावन पतित पावन यात्रा आ जो यात्रा विषय आपण कहुथिले जे नृत्यांगना माने नृत्य करुछन्ति कबीरंकर कथा मध्ये गोटे अछि संत कबीर जेतेबेले आसीथिले प्रभुंक दर्शन करिपारि नथिले जे जेतेबेले श्रीमंदिरे थिले सी कहुथिले भितरकु आसी जदि दर्शन करि नपारिबो नाही नीलचक्रकु दर्शन करिदियो काई कहुथिले नीलचक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक सोहे हीरा मंदिर आगे दासी नाचे कहे दास कबीरा मंदिर आगरे दासी नाचुछंती ये दासी जो गोपी गोपांगना माने आज नृत्य करुछंती आज सत्य जेपरे प्रतिमान होउची ए द्वापर युगर से जमुना कूल रे आज प्रभु रास उत्सव अनुष्ठित करुछंते टिके पूर्वर आपण डॉक्टर नरेश दास महोदय कहुथिले जे गुंडीजा मंडप को जाउछंते प्रभु सेठी तीन दिन रास उत्सव चलिबो सप्तमी अष्टमी एवं नवमी किंतु खाली सेतिक आज जपरि मन होउची एठी कोण प्रभु से कालिंदी कुलिया जमुना कुलिया ए जमुना कुल पाखे गोपी गोपांगन संगरे नृत्य करुछंती कि मने पड़ुछि से शंकराचार्यंकर गीत जहाँ को ओडिया रे आमे मध्य ताकु अनुवाद करियोछु

0: हे प्रभु जगत नाथ जगन्नाथ पथे देखा दियो नीति हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आ विलंब कर नाही आसो आसो आमे आपणंकु देखिबाकु व्याकुल होउछु बड़दाण्डरे गोपी गोपांगना माने अपेक्षा करिछंती समस्त दर्शन करिबा पई चक्र बनाडी बुलाउछंती किए मध्य सुंदर भावरे पताका कु जे बनाडी करी बुलाउछंती आ सिंहतर सिंह द्वारर सेई पतित पावन विग्रहंक पाखरे पतित पावन स्वयं निजे पर ब्रह्म जगन्नाथ रही अपेक्षा करी ओ भक्त को अपेक्षा करी प्रभु आउ काहेकि विलंब करुच कालिया कानो विलंब कर काहेकि
1: हाँ, ये पसंद
2: सर, चॉइस बहुत डिजाइन डिजाइन।